इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे।

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिडार 90.4 FM हर दिल की।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चिनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, only on रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।
2: मैं हूँ आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
3: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
1: रेडियो चुनार

अस्सलाम वालेकुम आदाब एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार, और लो हाजिर है और जेजुस लेकर शो व्हाट्स अप।

0: हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम।
1: दोस्तों फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चैनल के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स को, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स पर। साथ ही डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। जी हाँ, लॉग इन करें www.radiochunar.com पर। मैं हूँ जॉक्स, उसे है मजदार शो, वो सब सरे हट तड़काते रहा।

0: bunch of zoos.
1: Kom aan, ja.
2: Radio Chennai. Radio Radio Chennai. Weather update. Weather update.
3: और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम और ब्रदर आज का वेदर
2: रेडियो चुनाव रेडियो रेडियो चुनाव वेदर अपडेट वेदर अपडेट
3: जी हाँ आज के वेदर में क्या है खास हर एक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी आप तक आपके पास आज का वेदर ब्रदर होने वाला है मोस्टली सनी जी हाँ वेदर इज गोइंग टू क्रेजी एंड फनी क्योंकि कभी धूप कभी बारिश और यही है आज कल का ट्रेंडिंग वेदर स्टाइल
2: रेडियो रेडियो चेन्नई वेदर अपडेट
3: और आज की बात करें तो इस मोस्टली सनी

0: और टुडे आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 31 डिग्री सेल्सियस।
1: रेडियो चेन्नई वेदर अपडेट।
0: दोपहर होते होते देर आर चांस कि सूरज को बादल ढक सकते हैं और थोड़ी बहुत घूराहट भी हो सकती है बादलों में।
1: वेदर अपडेट।
0: यू इंडेक्स 4 पर, ह्यूमिडिटी 72%, विंड स्पीड 0 पर और विजिबिलिटी 4 किलोमीटर्स। अभी के लिए अगर हम आज की बात करें तो आज का सनराइज हुआ 5:50 पर, आज का सनसेट होगा 7:24 पर। नहीं नहीं, बादल नहीं गरजे बल्कि एक रॉकिंग ट्रैक है आपके लिए। रेडियो 90.4 एफएम पर जॉक्स उसके साथ मजेदार शवासा
2: बेटा साईं सिटे हक दड़काते रहो।

के संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल

0: कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: की हर इस फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर जो वायरल होता है आ ही जाता है व्हाट्सएप पे, क्योंकि कहत कहनी और लोगों ने भी ये बात है मानी कि जाने वायरल है तो व्हाट्सएप पर है। वायरल ऑन व्हाट्सएप पर आइए बात करते हैं एक डांस परफॉर्मेंस की जो पुलिस के लिए किया गया। रुको जरा, सब्र करो, बिफोर यू हिट एनी कंक्लूजंस लेट मी टेल यू दिस दैट दिस परफॉर्मेंस वाज ऑन द रोड साइड जब कुछ दावत खाने वाले वापस आ रहे थे दोस्त की शादी से और लड़कों का ये झुंड पुलिस ने देखा, रोका, चेकिंग की, कहा भैया कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने कहा दोस्त की दावत से, दोस्त की शादी से लौट कर आ रहे। पुलिस ने माना नहीं तो लड़कों ने म्यूजिक लगाया और सड़क पर ही डांस परफॉर्मेंस करके दिखाई। पुलिस ने भी एंजॉय किया और उसके बाद कहा चलो निकला, हो गया चेक और चेक कंफर्म हो गया, हम मानते हैं कि आप डांस पर गए थे और कर रहे थे नाचो नाचो।
3: बैल जैसे धूल उड़ा के सींग उठा के तुम भी नाचो, बाजे जम के ताल।
2: वीडियो वायरल हुआ तो व्हाट्सएप पर आ गया हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर जॉक्सिस के साथ मस्तार शो व्हाट्सएप सुडे हुक्ड।

0: जेसूस।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरफ।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
4: दोस्तों, हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का कोट ऑफ द डे। आज का कोट कहता है, टू बी ब्यूटीफुल मींस टू बी योरसेल्फ। यू डोंट नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर्स, यू नीड टू एक्सेप्ट योरसेल्फ। हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार, मैं हूं जॉक्स, सिट इट, धड़काते रहो।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: to Zeus.
1: Kom on, Aja.
2: Zeus.

चुनाव 90.4 एफएम आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप मैं हूं आपके साथ ही आरजे सीरीज जी हाँ व्हाट्सएप शो दोपहर के 12 बजे तक यूं ही हम और आप जुड़े हुए हैं साथ साथ चले हैं साथ साथ चलेंगे और ये सफर यूं ही जारी रहेगा जारी रहेगी बातचीत जारी रहेगी आपकी और हमारी यारी जो हमें है जान से प्यारी क्योंकि आप ही का प्यार बनाता है रेडियो चुनार को सही मेरे यार और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो

इतना 90.4 FM और शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में हिस्सा लेने के लिए शो का भाग बनने के लिए 9999904 इज द नंबर 88999904 आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज रेडियो चुनार की हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर मजेदार शो में आज बात हो रही है नेक्स्ट जनरेशन टेक की। अरे भैया टेक इतना एडवांस हो गया है, जब हम छोटे थे तो मतलब दो चैनल टीवी पर और नजर गड़ाए हम रहते थे कि कब मूवी आई कौन सा सीरियल चल रहा है, लेकिन आज पूरी दुनिया सिमट कर हाथ में आ गई है। जी हाँ, फोन से लेकर ऐसी ऐसी डिवाइसेस जो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ते, लेकिन आजकल के छोटे छोटे छोटे छट्टे नन्ने मुन्ने बालक पालक बना के खाते हैं ऐसी डिवाइसेस को। जी हाँ, एडवांस एंड इमर्जिंग इनोवेशन से लेकर ट्रांसफॉर्मेशंस बिकॉज ऑफ द टेक इन द वर्ल्ड, चाहे वो बिजनेस हो, इंडस्ट्रीज हो, डेली लाइफ हो, हर जगह ये नेक्स्ट जन टेक जो है अपना पांव गड़ा रहा है। तो आज हम भी इसी बारे में बात करेंगे, बरकरार इसी बारे में बात होगी आज नेक्स्ट जन टेक की। आप भी हमारे साथ जुड़े और फिलहाल के लिए ये गाना, क्योंकि डैब करना तो बनता है, क्योंकि अगर आप डैब नहीं करेंगे तो सैड कैसे रहेंगे, मतलब डैब के साथ कुछ वर्ड मैच ही नहीं हुआ। फिलहाल राइम छोड़ो, गाना सुनो और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन, मैं हूँ जॉक्सू, सिर्फ

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Kom maar, ja.
1: Het is Frequency, hartelijk welkom op Radio Chanaar 90.4 FM. Aap sun rahe hain Mazdar Show, aur sab main hoon aapka saathi Chugs, sir hamare saath jude hain Shakir. Likhte hain Shakir sir, topic ka wait kar raha rehta hoon aur karta rehta hoon. Sorry, zuban thodi idhar udhar phisal jati hai. So, Shakir likhte hain, topic ka wait karta rehta hoon aur topic sunte hi main bhi dil se jud jata hoon. दोस्त उम्मीद करता हूँ कि आज का भी टॉपिक जो है आपको पसंद आ रहा होगा. थैंक यू सो मच इस प्यार और इज्जत अफजाई के लिए. रिजना 90.4 एफएम आप भी हमारे साथ जुड़े, अपनी बात हम तक पहुँचाए और बताए क्या है आपके दिल में वाणी जो आप चाहते हैं पूरी दुनिया को सुनानी. 8899-0409-0409 नंबर 8899-0409-0409 आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज. जी आज नेक्स्ट जेन टेक की बात हो रही है और देख सकते हैं आप किस तरह से चीजें बदल रही है. अगर हम बात करें क्वांटम कंप्यूटिंग की, दैट्स गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो झंडे गाट रही है, वही कुछ रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि भैया बिकॉज ऑफ द 6G इंसान को ये क्षमता मिलेगी दैट ही कैन सी थ्रू द वॉल्स फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस. अब एक ही क्षेत्र पर जो है ये टेक एंड टेक्नोलॉजी या गैजेट्स जो है असर नहीं डाल रहे, बल्कि हर एक क्षेत्र इनसे फ़ायदा ले सकता है. चाहे इंडस्ट्रीज हो, मेडिकल हो, चाहे बाकी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह हो, हर एक चीज़ में ये जो नेक्स्ट जेन टेक है इस्तेमाल किया जा रहा है. अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेक किस तरह से इवॉल्व हो चुका है. पीपल हु आर फ्रॉम 90s और मिलेनियल्स इस बात से बखूबी वाकिफ है कि टेक से रिलेटेड कितने इश्यूज थे या कितनी कमजोरियां थी. एंड टेक वाज इवॉल्विंग इन अ वे, बट लोगों को ज्ञान नहीं था, चीज़ें महंगी थी. लेकिन आज उत्तम से उत्तम सर्वोत्तम टेक गैजेट जो है मिनिमल प्राइस पे हमें मिलते हैं. चाहे वो फोन्स हो, चिप्स हो या AI ऑपरेटेड डिवाइसेस हो, आज आपके हाथ में पूरी दुनिया है.

So these gadgets, this technology is booming and it's growing every day. And देखिए हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, अच्छा भी बुरा भी. यही नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो उससे

दिक्कत भी हो सकती है इंसानों को. कौन सी चीजें हैं विच वी हैव टू प्रे फॉर नॉट टू हैपन, उसके बारे में बात होगी. बिलाल, राजा कुमारी और डिवाइन कुछ कहना चाहते हैं. Yeah, Gully Gang track, it's Street Slums. Main hoon Jock Zeus, sit here, tirgaate raho.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

दोस्तों रेडियो चुनाव 90.4 FM आप एंजॉय कर रहे हैं हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन शो व्हाट्सअप। अगली पेशकश आई फील गुड शो डेडिकेटेड टू द लवर्स ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक हर दिल की धड़कन रेडियो चुनाव सड़े हट मेरे यार धड़का दे रहा

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

हाय, मैं हूँ आरजे ज़ूस और आप सुन रहे हैं रेडियो चैनल 90.4 एफएम। Only on Radio Chinar 90.4. I feel good. A new vibe for the lovers of Western music with me, RJ.

देखिए हूँ आंटा वावा करते हुए मैं भी आ चुकी हूँ और बस बातें करने के लिए तैयार हूँ। 90.4 रेडियो चुनाव पर आगा सो चुका है शो चुनाव बीट्स का विद फुल ऑन वाइब एंड ट्राइब बीट्स।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: Beats on repeat, show Chunar. Beats आप enjoy कर रहे only on radio Chunar 90.4 FM. ढेर सारी बातें हो रही है, मस्ती मजाक बन तो है, ये बातें हैं, बातें आपकी और मेरी है, और सबसे ज्यादा जरूरी है वो जज्बात, हालात, ख्यालात मैं भी और आप भी मुझ तक पहुंचाएंगे. सो उसके लिए मैं तो काफ़ी एक्साइटेड भी होती हूँ, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मतलब शो में आके जो वाइब आती है ना, और उस पर भी सोने पे सुहागा वाली बात ये है कि ट्राइब मेरी पूरी साथ होती है. सो फिलहाल मैं भी हूँ, आप भी हैं, मौका है, दस्तूर है. आप कहीं ना जाइए हुजूर, क्योंकि मैं आपको कहीं जाने भी नहीं दूंगी बराबर 2 बजे तक. सो जल्दी से बन जाइए शो का हिस्सा, सुना कि मतदार से कोई किस्सा, बस वही है नंबर जो कि आपको मुझे छोड़ के रखता है. ओए हाय, देखिए बातें करके जो डोपामिन बढ़ जाता है ना, बस क्या ही कहे. और उस पे बैक टू बैक सॉन्ग, हाय प्यार में तो हार जाते, बट हम तो कहते हैं जीत है कि बैक टू बैक सॉन्ग से आप है, हम हैं, एंड ऑल दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनार 90.4 एफएम पर आप मिलके दरगाते रहो.
1: बेबी नी बेबी तेरी अख देवे डोपामीन, हल्का जा सानू तेरा टच देवे डोपामीन.

Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

बीज ऑन रिपीट शो चुनाव बीच सब एंजॉय कर रहे हैं ऑन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम ढेर सारी बातें हो रही हैं वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेशनल हाईवे पे आपको बता दें कि आज टू वे ट्रैफिक जो है वो अलो किया जा रहा है, यानी कि टू वे ट्रैफिक मूवमेंट जो है अभी अलो किया जाएगा। आज यहाँ से श्रीनगर से जम्मू आप जा सकते हैं, जम्मू से श्रीनगर आ सकते हैं, और टू वे ट्रैफिक है तो आपको

0: कोई भी नहीं रोक सकता है. लाइट मोटर व्हीकल्स, हैवी मोटर व्हीकल्स एंड नेसेसरी ये है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा अभी भी जारी है और उसके तहत हमें पता होना चाहिए कि 7:30 तक यानी सुबह से लेकर शाम के 7:30 तक हम जो लाइट मोटर व्हीकल्स है वो शाम के 11:30 तक हम चला सकते हैं. हैवी मोटर व्हीकल्स को सुबह से शाम के 7:30 तक ही अलाउ किया जाएगा. उसके अलावा जो ट्रैफिक एडवाइजरी हमें दी गई है उसके मुताबिक ही हम नेशनल हाईवे पे आप आ सकते जा सकते हैं. पहले एडवाइजरी देखिए, आप TCU जम्मू उधमपुर और आप उसके अलावा TCU श्रीनगर से भी संपर्क कर सकते हैं और आप बाकी जानकारी पा सकते हैं. फिलहाल के लिए टू वे ट्रैफिक है, आप आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं, अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं. हाँ, ज़रूरी सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाना. मुझे लगता है कि बहुत ही ऐसे लोग होते हैं ना जो आज समझते हैं कि नहीं जी ये गलत चीज़ है और ये चीज़ हमें फॉलो नहीं करनी है. सब क्या आई मीन एवरीबॉडी इज़ लाइक, कोई एक इंसान ऐसा होता है कि जो ये चीज़ फॉलो नहीं करता, बट एवरीबॉडी इज़ लाइक कि हमें अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है. हम भी चाहते हैं कि हम आपको याद दिलाएं कि आपकी सेफ्टी सबसे पहले है और गलत जगह पर ओवरटेक करना गलत है. ड्राइविंग SOPs को फॉलो करना वो ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, वो हमारी भी जिम्मेदारी कि हम अपना ख्याल खुद रखें और हमने ये चीज़ खुद से ही करनी है.
1: तूने बंदी गलत देखा या पलट माहौल बदलती है क्या?
0: तो ये माहौल तो बदल चुका है और ये बात ही ना गलत हो और बंदा तो सही है और बराबर 2 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगी शो चुनाव बीट्स पर. आप एंजॉय कीजिए ट्रैक ओनली ऑन शो चुनाव 91.4 FM.

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats ve Darje Diva only on Radio Chinar 90.4 FM. 90.4 FM.

0: साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: चुनार बीट्स विद हर्षे दीवा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM। Unstoppable with RJ Deva.

अनस्टॉपेबल शो चुनार बीच पर एक छोटा सा सेगमेंट जहाँ पर एक डेली डोज हर रोज आपके लिए, और उस डेली डोज में बहुत सारी बातें भी होती है आपकी हमारी। वैसे हम हमेशा ये कहते हैं कि पता नहीं क्यों जिंदगी अजीब सी हो गई है या फिर हमें जिंदगी समझ नहीं आती है, मगर अक्सर सिचुएशन सान जिंदगी में जवान ये लेस पास आन छो कि कुछ सही नहीं जा रहा है, सच में कुछ सही नहीं जा रहा है या फिर हम ही सही नहीं समझ पा रहे, यानी दोनों ही सूरत हाल में चीज़ें डिफरेंट हो जाती है और हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। एंड आई बिलीव कि इस सोरी सन इज द मार्क्स था आसान कि जब हम कुछ समझ नहीं पाते हैं तो हम हमेशा कसूर अपनी ज़िंदगी को देते हैं कि भाई ज़िंदगी सही नहीं, ज़िंदगी ने ये किया, ज़िंदगी ने वो किया। बट ट्रस्ट मी, अगर हम चाहें तो अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत भी बना सकते हैं सिर्फ अपना दिमाग का सही इस्तेमाल करके।

अगर चीज़ें ख़राब हो रही है बट उसमें परेशानी भी रहती है, पर अपना जो दिमाग है, अपना जो कंट्रोल है वो नहीं खोना है, या इतना भी उस चीज़ को सीरियस नहीं लेना है कि हम सल्यूशन ढूंढ ही ना पाए। इस पर दहाका बकान रोज़ान कि शायद मैं तोगने की हैं, शायद चन मैं तम की हैं, शायद मैं नसीब ही ख़राब। और ये लाइन बहुत ही चुभती है, जो भी कोई इंसान ऐसा बोल देना कि नसीब ही ख़राब है। देखिए, नसीब

उसमें पा लेते हैं, लोगों से बात करते हैं, क्या सही है. बस उस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए और समझ पाइए कि ज़िंदगी चौबारा ज़्यादा खूबसूरत. मगर बस ये कि अच्छे एक्सक्यूज़ थ्रावन की ना ऐस तो उगने के हैं. अच्छी सोच उनके शायद से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए है. और यही तो है, ज़िंदगी हमारी इतनी खूबसूरत है ना, अगर हम इस थोड़ा सा इसके बारे में सोचें ना कि क्या चीज़ हमारे साथ हो रही है, ये भी खूबसूरत हमें लगने लगेगी. परेशानी, खुशी, गम, ये तो हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है. बस ये है कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी को डील कर रहे हैं, या फिर हम ज़िंदगी के साथ कैसे उस चीज़ को समझ रहे हैं, या फिर ऐसा क्या छुपासान सुन ज़िंदगी किस गस नियर इन, या फिर सुन ज़िंदगी कैसा खूबसूरत, या ऐसा किस पर ज़िंदगी गुजारें, सच ऐस पाने डिसाइड करो. اس پہ یہ تو ہے پنیر آستان وات نویت نمبر چھ یس تو اس جوڑ تھوان تو سہ نمبر اس سان لسنرن پتہ سہ اٹھ اٹھ نو نو نو صفر ٹور نو صفر ٹور تھی ہوں ٹیکس واٹس ایپ کرت کال کرت تو ریڈیو چلاؤ 90.4 FM اس ہر دل دوبرائے امی حز بنت.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
2: वादिये लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

आज एक बहुत ही खास दिन है. आज हम अपनी जो नई पीढ़ी है, हमारा जो अभी यंग जनरेशन हमारी है, यूथ है, आज हम उनको सेलिब्रेट करते हैं. क्योंकि आज 11 अगस्त है और 11 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है. क्यों किया जाता है? देखिए, ये ज़्यादातर इसको बताया जाता है 11-12 को सेलिब्रेट किया जाता है, बट हाँ, सेलिब्रेट किया जाता है आज और कल. आज स्पेशली बात की जाती है कि युवा जो हमारा आने वाला कल है वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. यूथ जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारी एक शान है, जो हमारा स्ट्रेंथ है, उनको, उनके लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए गए और उनके बारे में क्या चीज़ें हैं जो आ रही है, वो कैसे हमारा फ्यूचर है, कैसे संवार सकते हैं, उस बारे में बात हो रही है. आप भी शो कैसे बन सकते हैं, 8899049904 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए. शो चुनार बीट्स का हिस्सा बन जाइए.

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: to swing.
1: जी हाँ, गर्ल्स लाइक टू स्विंग, क्योंकि मुझे लगता है दुनिया औरत के बगैर कुछ भी नहीं है. और मुझे क्या हर कोई इंसान इस चीज़ से एग्री करेगा कि अगर औरत ना हो तो इस दुनिया में जो है लाइफ भी पॉसिबल नहीं है और बहुत कुछ बिखर सकता है. सो दुनिया औरत के बगैर कुछ नहीं है. बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि एक औरत से घर है, एक औरत से संसार है, औरत त्रिशक्ति है, औरत एक शक्ति का सबसे बड़ा रूप है. सो आपका मानना क्या है? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड विदाउट वेमेन. आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं 8899-04-904 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो चिनार बीच का हिस्सा बन जाइए.

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-400-64-1800-180-7178 1-800-180-7199। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

मेरे हिसाब से तो सच में सोना कोई नहीं है मेरे वाइब और ट्राइब के बगैर, बिकॉज मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मेरी पूरी वाइब मेरे साथ मिलकर एक ट्राइब बनाकर हम आगे सफ़र पहुंचाते हैं। अभी सफ़र पहुंच चुका है कि जब आप अपना सफ़र जारी रखें और अपने फेवरेट ट्रैक सुन पाए। अब जीत ये है आपकी कि आप अपना फेवरेट ट्रैक सुन पाएंगे। 8899-04904 पर आप टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं। सो म्यूजिक ऑन डिमांड स्टार्ट हो चुका है जहां पर आप अपने फेवरेट ट्रैक सुनेंगे। 8899-04904 ये नंबर है, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए। शो म्यूजिक ऑन डिमांड का ऐसा बन जाए।

मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ

0: एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिए। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अवर सोसाइटी। लेट अस से हाई टू लाइफ एंड बाय टू ड्रग्स।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

आयमन की रिक्वेस्ट आई है इस ट्राई के लिए, अजबल से उन्होंने कॉल की है. थैंक यू सो मच आयमन कॉल करने के लिए. और आयमन की रिक्वेस्ट पे ये ट्रैक एंजॉय कीजिए. ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM. शो म्यूजिक ऑन डिमांड चल रहा है. आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं 8999-0409-04 पर टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए. शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाए.

अब ये तो मैं दावे से कह सकती हूँ, मुझसे बढ़कर तो असरा ही चाहेगी कि हंगामा में फुल ऑन ड्रामा हो, और आप जो बाकी सफर है उनके साथ अभी एंजॉय कीजिएगा। फिलहाल मैं जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखे। शो म्यूज़िक ऑन डिमांड ख़त्म हो चुका है और ईशा की ये लास्ट रिक्वेस्ट थी, और बाकी रिक्वेस्ट हम कल पूरी करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आए। आप खुश रहे, मुस्कुराते रहे और सुनते रहे रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

देखिए मारिया तो नहीं आई, पर दो से चार रेडियो चुनार पे आरजे असरा आती है, शो होता है हंगामा, जहां होता है भरपूर ड्रामा। तो जाना एग्जैक्टली दैट्स द पॉइंट के इस सफर में, दो से चार हंगामा के सफर में आपके साथ मैं होती हूँ, जहाँ एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन

क्या बजेंगे और लाइफ का ऐसा फिलोसॉफिकल टच मिलता है जो कहीं और नहीं होता। देखिए शो शुरू हो चुका है, बहुत सारी बातें हैं, अपडेट्स हैं, अपडेट से लेकर हर दिन का एक स्पेसिफिक टॉपिक होता है और फिर अंत में 3:30 से 4 तक एक स्पेशल सेगमेंट दैट इज गेम ऑन, स्पोर्ट्स का अपडेट। बट अभी की बात करें तो शो शुरू करते ही प्ले होता है कुछ क्रेजी कुछ खास। देखिए घर तो जाएंगे पर अभी नहीं, अभी 4 तक आपके साथ मजे करेंगे। 8899904904 इज नंबर, आप इस नंबर पर कॉल मैसेज टेक्स्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। शो शुरू हो चुका है तो बन जाइए शो का हिस्सा। 8899904904 इज नंबर, आई रिपीट, बी द पार्ट ऑफ द शो बिकॉज इट्स हार्ड।

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और देखिए, जैसे कुछ देर पहले ही शो शुरू हुआ है और आते आते ही फ्रेश हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया की सब्जी मंडी में हमारे लिए क्या है। और आज सोशल मीडिया, चाहे हम यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम की बात करें, तो वहाँ लोग क्या रीपोस्ट कर रहे हैं, लिप सिंकिंग, डांस रील्स, या किसके बारे में चर्चा हो रही है। और आज बात हो रही है हमारे गुरु रंधावा, जो सिंगर हैं, उनके बारे में बात हो रही है। उनके जो काफ़ी बैक टू बैक ट्रैक्स उन्होंने रिलीज़ किए हैं पूरे 2026-25 में, बट लोग पैन इंडिया अभी इसी बारे में बात कर रहे हैं कि उनका जो लिरिक गेम है, फैन तो उन्होंने काफी बना लिए थे, बट जितना उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है, उनकी क्वालिटी जो गाने की है वो कम होती जा रही है। और लोग कह रहे हैं कि इनका जो

0: तेरे गेम है इज नॉट सो परफेक्ट.
1: यू सो परफेक्ट पिंड तो शहरा दे तक. यू सो परफेक्ट तेरा गेम तो होनी गोल लक.
0: देखिए ये मैं नहीं कह रही, ये कह रहा है इंटरनेट. मैं हूँ अस्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM. और आपका क्या, आपकी क्या राय है इस बारे में कि एक्चुअली रंधावा जो है, गुरु रंधावा, उनका जो परफॉर्मेंस है कैसा है? क्या ये डिटोरिएट हो रहा है क्योंकि बार बार इतने सारे ट्रैक रिलीज कर रहे हैं तो क्वालिटी कम हो रही है? मैं हूँ अस्रा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन. मैं बस यूँ कही और यूँ वापस आए.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: Welcome back to Show Hangama, only on Radio Chinar 90.4 FM, the hottest frequency of North Kashmir. जी हाँ, शो हंगामा पे अभी वक्त है रेलवे अपडेट का। और आज की अगर लोकल सर्विसेज की अपडेट बोले तो दे आर रनिंग एज पर द समर टाइम टेबल, और यू कैन अवेल द समर टाइम टेबल थ्रू ऑफिशियल इंडियन रेलवे एप्स, दैट इज रेल वन। चाहे आपको ट्रेन बिटवीन स्टेशन के बारे में पता करना है, कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है, कितने बजे आ रही है, लाइव लोकेशन ऑफ द ट्रेन, एवरी थिंग ऑन द गो। लेकिन लोकल सर्विसेज के अलावा भी आज कुछ अचीवमेंट्स हैं रिलेटेड टू रेल माइलस्टोन्स, जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट फ्यूल ट्रेन है, दिस इज़ अ वेरी हिस्टोरिक मोमेंट फॉर कश्मीर, बिकॉज जो ट्रायल ट्रेन चल रही थी अप टू श्रीनगर फ्रॉम उधमपुर श्रीनगर रेलवे लिंक के लिए, जो एक्चुअली कश्मीर वैली तक पहली फ्यूल ट्रेन पहुँची है, यानी कि पेट्रोल हो डीजल हो, अब वेदर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ट्रेन और रेल के सहारे से किसी भी मौसम में एक अवेलेबिलिटी कश्मीर को मिल रही है, यानी कि कश्मीर की जो कनेक्टिविटी है बाकी पार्ट्स ऑफ द कंट्री के साथ वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके अलावा जो कटरा

श्रीनगर फाइनल लिंक जो प्रिपेयर हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी जो अभी इंटीग्रेटेड नहीं थी, जो जिस पे अभी काम चल रहा था, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेल मेंटेनेंस हो, टेक्निकल मेंटेनेंस वर्क हो, वो सारी चीज़ें नियरली 95% कंप्लीट हो चुकी हैं। अब लास्ट के जो लूप होल्स हैं उन्हें चेक किया जा रहा है, तो इट द कटरा श्रीनगर फाइनल लिंक जो है दैट विल बी फुली फॉर द पैसेंजर इंटीग्रेशन रेडी इन सम डेज। अब देखिए, जिस रेलवे लिंक को हम बारामूला, बड़गाम, बानीहाल, संगलदन रेलवे लिंक कहते थे, अब उसका नाम चेंज हो गया है, क्योंकि ऑफिशियली, बिकॉज द वर्क इज टोटली कंप्लीटेड, सो ऑफिशियली उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक कहलाएगा। और आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेशंस पर 10-15 मिनट पहले पहुंच सकते हैं, ताकि आपका जो शेड्यूल है वो एज पर योर नीड चले, कोई भी वो ऑलमोस्ट कॉट द ट्रेन वाला मूवमेंट ना हो, एंड यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सवारी अपनी और सामान की खुद जिम्मेदार है। मैं हूं असरा, सुनते रहिए रेडियो सुना 90.4 FM। आप अपने और सामान के जिम्मेदार है, और हम इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के। मैं हूं असरा, सुनते रहिए रेडियो सुना। मैं बस यूं कह रही हूं, वापस आए।

0: पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: हाय मैं हूँ आरजे ज़ूस।
3: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
4: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
5: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर, और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: वही जहां आधा हिंदुस्तान सोता है।
1: कमोन डेलना चालनी तरनी वाथी तरी वार जोंती।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक जी, हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी नॉर्थ कश्मीर 90.4 एफएम पे शो चल रहा है हंगामा। शो है हंगामा एंड अभी हम बात करने जा रहे हैं वन मिनट फैक्ट के बारे में। और आज का फैक्ट है हमारी बॉडी से रिलेटेड, यानी कि कैसे जब हम कोई भी इमोशन सप्रेस करते हैं, हमें रोना आता है, हमें गुस्सा आता है, खुशी होती है, या कुछ कहना चाहते हैं, बहुत ही मतलब हमें वो फीलिंग होती है, अर्ज होता है कि हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं बट हम कहते नहीं हैं, उस वजह से ये होता है कि हमारा जो वो हिडन स्ट्रेस है हमारी बॉडी में सेव रहता है और हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो एक्चुअली डिफॉर्म हो सकते हैं और फंक्शंस भी रीशेप हो सकते हैं। यार कि भाई खतरा है बॉडी को, इसीलिए

आजू बाजू मत देख, शर्माना छोड़ डाल और वो बोलो जो दिल की बात है। मैं हूँ असरा सुंदर, रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग।

अब भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: Jeremy. Chinar Beats with Harche Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM. मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और जैसा कि आज का टॉपिक हमारा, कुछ देर पहले ही हमने डिसाइड किया कि आपको बताएंगे और हमने बताया भी, बिकॉज आज हम वुमेन इन पेट्रियार्कल वर्कप्लेसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस रहती हैं जहाँ पे एक जेंडर गैप रहता है। और कहीं ना कहीं जो लड़कियाँ हैं वो जब एक वर्कप्लेस पे काम करती हैं, और हर जगह ऐसा नहीं होता बट कुछ जगहें ज़रूरी ऐसा एक एनवायरनमेंट ज़रूर दिखाती हैं जहाँ पे जो पॉलिसीज़ हैं, जहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो एक हिसाब से मेल डोमिनेंट फील्ड्स में काम कर रही हैं, और कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाने के लिए वो लगी रहती हैं, काम करती हैं पूरी तरीके से, बट एक ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन तो ज़रूर मिलता है। अगर लीडरशिप की बात करें तो बहुत जगह पे, बहुत केसेस पे, बहुत कोई भी प्रोजेक्ट हो, ऐसा ज़रूर होता है कि वो लीडरशिप क्वालिटीज़ अगर एक लड़की में हो भी, बट कहीं ना कहीं वो मौका उन्हें एक सेकेंड हैंड तरीके से दिया जाता है, एक सपोर्ट ओरिएंटेड रोल होता है, मेन लीडरशिप रोल बहुत कम देखने को मिलते हैं। जैसे कि आज हम वुमेन इन पेट्रियार्कल वर्कप्लेसेस पे बात करेंगे कि एक्चुअली होता क्या है रीजंस, क्या फैक्ट्स है, और कैसे हम इस चीज़ को, ऐसी जो भी सिचुएशन है अगर आपके साथ हो रही है तो आप कैसे उसको डिपेक्ट कर सकते हैं, आपको कैसे पता चल सकता है कि एक्चुअली में क्या सही है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब देखिए, इन्फॉर्मेशन के साथ एंटरटेनमेंट का डोज है भरपूर। मैं हूँ असरा सुंदरी, रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: हाय, मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। और जैसे कि आज हम वेमेन इन पेट्रियारिकल वर्क स्पेस के बारे में बात कर रहे हैं, और कैसे बहुत सारे ऐसे वर्क प्लेसेस हैं जहाँ पे लड़कियाँ जब काम करती हैं तो कभी कभी उन्हें सिर्फ अपना काम नहीं दिखाना पड़ता बल्कि अपनी पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस को प्रूव करना पड़ता है, एक प्रूफ देना पड़ता है। चाहे सेम क्वालिफिकेशन हो, सेम डेजिग्नेशन हो, वर्कलोड भी सेम हो, बट लेकिन एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा रहती हैं। यानी कि अगर कोई लड़की असर्टिवली लाइक अ वुमन अ लेडी अपने जो ओपिनियंस है असर्टिवली सामने रखे तो वो बॉसी हो गई। अगर चुप रहे ऑल द टाइम तो शायद कॉन्फिडेंट नहीं है। अगर एम्बिशियस है तो शायद ज़्यादा बोल रही है, शी इज़ जस्ट टू मच। और अगर बाउंड्रीज क्रिएट करने की कोशिश करे तो भाई ये तो एटीट्यूड में रहती है। तो बेसिकली पेट्रियार्कल सिचुएशन, पेट्रियार्कल वर्क प्लेस वो वर्क प्लेसेस होते हैं, या कोई भी ज़रूरी नहीं है सिर्फ वर्क प्लेसेस हो, बट कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे वो पुराने नॉर्म्स के साथ ही लड़की को काफ़ी ज़्यादा जज किया जाता है। और हम ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप काम करें, काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट काम के साथ साथ यू हैव टू अर्न द वर्क ऑल्सो। चाहे अगर आपने कोई काम किया है तो आपको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए, आपको अपनी अचीवमेंट्स को डॉक्यूमेंट करना चाहिए, चाहे ईमेल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, नंबर्स हैं, रिजल्ट्स हैं, तो रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। क्रेडिट लेना एरोगेंस नहीं होता बल्कि एक प्रोफेशनल तरीके से एक कॉरपोरेट एनवायरमेंट में सर्वाइवल है। इसके अलावा लाख लोग बुरा माने, ये क्या हो क्या नहीं हो, बट एक बात की ज़रूर लाइक मैं पुष्टि करना चाहूँगी कि बाउंड्रीज रखना भाई कितना ज़रूरी है। जब तक आप किसी चीज़ की बाउंड्री नहीं रखेंगे तब तक बार बार आपसे वही चीज़ एक्सपेक्ट की जाएगी जो कि अनफेयर है। इसलिए ज़रूरी है कि यू हैव टू टेक योर स्टैंड एंड यू हैव टू टॉक फॉर योर सेल्फ। Definitely nobody is ready for the corporate workplaces or any patriarchal workplace. So it's important कि आप अपना ख्याल रखें and be the durandar of your life. Why not? Enjoy कीजिए back to back tracks only on Radio Sunar. देखिए अभी information तो एकदम तकड़ी है, बस जो entertainment है back to back tracks के साथ ये भी तगड़ा हो जाएगा। मैं हूँ असरा, सुन रही है Radio Sunar 90.4 FM, ये है हर दिल की धड़कन। और अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन से अपनी जिंदगी में गुजरे हैं या अभी गुजर रहे हैं तो हमें फ़ोन कीजिए 8899-0904 इस नंबर, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और अपने दिल की बात हम तक पहुँचाइए। Enjoy कीजिए back to back tracks only on Radio Sunar 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन।
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.

0: जेसियस।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM पर दिल की धड़कन।

हाय, मैं हूं आप सुन रहे हैं रेडियो सुनार 90.4 एफएम। और जैसे कि आज हम वुमेन इन पेट्रियार्कल सोसाइटी, पेट्रियार्कल वर्कप्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो ट्रैक अभी चल रहा है फ्रॉम द मूवी एतराज, गाने का नाम है तलातुम, बट इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही डिपिक्ट किया गया। अब देखिए, सारी स्टोरी

तो बहुत डिफरेंट है, बट हर मूवी में एक स्टीरियोटाइप ज़रूर होता है, जो एक लड़की कॉन्फिडेंट हो, वेस्टर्न क्लोथ्स पहने, बस वही वैम्प होती है, वही नेगेटिव कैरेक्टर होता है। बट अगर देखा जाए तो ड्रेसिंग और कैरेक्टर का कोई रिलेशन नहीं होता। अभी भी अगर देखा जाए, अभी तो काफ़ी सिनेमा चेंज हो गया, बट अभी की जेनरेशन मूवीज़ को सिर्फ देखती नहीं है बल्कि एनालाइज करती है। तो बेसिकली हमें सिनेमा भी कहीं ना कहीं हमारा जो माइंडसेट है वो शेप करता है कि कैसे बहुत जो अगर लड़कियां बोल्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो वो नेगेटिव हैं, दे आर ईविल, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि ऐसा होता है कि वो बस कॉन्फिडेंट हैं, वो खुद को लेके कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि दे नो व्हाट दे आर डूइंग। और आज हमने जैसे इस टॉपिक के बारे में बात की, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी जो अकाउंटेबिलिटीज लें, जो हमारी गलती है उसको संभालें, बट साथ साथ में नेवर let anybody walk over you, चाहे वो workplace है, चाहे आपका घर है, चाहे friends हैं, family है, जो कुछ भी, कोई भी bond है, इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हम अपना ख्याल रखें, हम अपनी इज्जत का ख्याल रखें और साथ में हम किसी को hurt ना करें। अब देखिए, हमने बात तो की आज के टॉपिक के बारे में, बट एंटरटेनमेंट बैक टू बैक ज़रूरी है, और कुछ ही ट्रैक के बाद हम बात करने जाएंगे कि अब कौन सा सेगमेंट शुरू होगा। एंजॉय कीजिए ये ट्रैक, और इस ट्रैक के बाद शुरू होगा कुछ खास। मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर

0: to Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM. The game is on. Tune in to Radio Chennai 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chennai 90.4 FM.
1: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो सुनार. रबी शुरू हो चुका है. गेम ऑन जहाँ मिलता है आपको स्पोर्ट्स का अपडेट, चाहे वो लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल हो. और आज का जो अपडेट है दैट इज सिंक्यूफिल फील्ड कप के लिए, जो कि चेस से रिलेटेड एक कप है, वो खेला जा रहा है बाय द वन एंड ओनली चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, दैट इज आर प्रज्ञानंदा. और उन्होंने ये जो ओपनर मैच था, ओपनर एक कंपटीशन था, वो उन्होंने जीता है अगेंस्ट सैमुअल सेवियन. एंड कहीं ना कहीं हमें पता ही है कि भाई एथलीट्स जा रहे हैं या जो भी स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग हैं, जो भी हमारे एक स्टार्स हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स फ्रॉम इंडिया, वो जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो वापस लेके आते हैं. एक एक्सपीरियंस होता है उनके लिए और एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत जीत भी लेकर आते हैं. एंड सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इंटरनेशनली नेशनली हर जगह रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दैट इज समथिंग रियली ग्रेट. एंड देखिए, इंफॉर्मेशन तो हो चुकी है बट एंटरटेनमेंट अभी बाकी है. एंजॉय कीजिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रैक्स फ्रॉम द मूवी प्यार दिलों का मेला है. एंड एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुना 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

पानी पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है और इसके बावजूद भी

0: ही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो

लेकिन हम तो मिलेंगे हर दिन, हफ्ते के 6 दिन हमारा साथ साथ होता है। अभी 4 बजने वाले हैं और आपका और मेरा साथ खत्म होता है, पर आज जा रही हूँ, कल वापस आऊंगी बराबर 2 बजे करने आप सबको एंटरटेन ओनली ऑन रेडियो सुनार 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। अब देखिए, आज जा रही हूँ और जाते जाते हमेशा मैं आपको ये कहती हूँ कि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ क्रेजी करते रहिए और सुनते रहिए रेडियो सुनार, क्योंकि ये है हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर 90.4 FM। और आज जा रही हूँ, कल वापस आऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। दिस वाज ऑल अबाउट मी, दिस वाज ऑल अबाउट शो हंगामा, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, ओवर एंड

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आए थी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Channel 90.4 FM हर दिल की धड़कन। इब्तिदा उस रब जलील के नाम से जो सारे दिलों के भेद खूब जानता है, हर धड़कते दिल और परखती निगाह को मेरी तरफ से प्यार मोहब्बत और खलूस भरा सलाम अलैकुम। आपने ट्यून इन किया है नॉर्थ कश्मीर का इकलौता सुपर डुपर रेडियो स्टेशन 90.4 एफएम रेडियो चनार, हर दिल की धड़कन, और मैं हूं आपका रेडियो होस्ट और दोस्त आरजे साहिल मुजफ्फर। इस खूबसूरत सी शाम में लेकर आया हूं शो दिल की बात साहिल के साथ, और हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे जुड़े होंगे हमारे साथ। और इफ यू आर ड्राइविंग राइट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम, मेक श्योर कि आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते करते अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी घर पहुंच चुके हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ इस शो का मजा ले रहे हैं, तो बॉस वहीं पे रहिएगा, ढेर सारी बातें करनी है आपसे। लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफोटेनमेंट इज लाइंड अप फॉर यू इन दिस ब्यूटीफुल ट्विस्टेड ट्यूसडे इवनिंग। ट्रैफिक SOPs को फॉलो करना बहुत जरूरी है, सीट बेल्ट लगा के रहिए, रफ्तार पे रखिए काबू, और अगर आपको एम्बुलेंस दाएं बाएं कहीं भी दिखाई दे तो सबसे पहले उसको जाने की जगह दीजिए, क्योंकि उसमें किसी की जिंदगी की डोर है और उनको हॉस्पिटल पहुंचना है। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करें और सिविक सेंसेस को फॉलो करके एक ऐसा सबूत दें कि हम इस शहर के जिम्मेदार शहरी हैं। बातें करेंगे बहुत, लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंफोटेनमेंट इज लाइंड अप फॉर यू इन दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। यू जस्ट फास्टन योर सीट बेल्ट बिकॉज द फ्लाइट ऑफ एंटरटेनमेंट इज ऑल सेट टू टेक ऑफ फ्रॉम द स्टूडियोज ऑफ रेडियो चनार विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक रोलिंग रोलिंग रोलिंग अप इन द बैकग्राउंड, वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स फ्रॉम द मूवी डॉन। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आरजे साहिल मुजफ्फर नाम मेरा, लौट के आऊंगा।

जी हाँ, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आपने ट्यून किया है नॉर्थ कश्मीर का इकलौता सुपर हिट रेडियो स्टेशन 90.4 एफएम रेडियो चिनार, हर दिल की धड़कन। और मैं हूँ साहिल मुजफ्फर। खूबसूरत सी शाम है और शो हो चुका है शुरू दिल की बात साहिल के साथ। आज हम बात कर रहे हैं अपने शो पे, इट्स ऑल अबाउट डिजिटल सेफ्टी। आज हम डिजिटल वर्ल्ड के साथ जुड़े हैं, इंटरनेट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ। दुनिया हमारी मुट्ठी में आ गई है, लेकिन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ध्यान रखना है हमें बहुत सारी चीज़ों का। जब हम डिजिटल वर्ल्ड पे एक सर्वर पे ऑनलाइन इंटरनेट के साथ जब भी कनेक्ट हो जाते हैं, सो हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती है। हमारे जो फाइनेंसेस हैं वो हम मैनेज करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से, और हमारी जो पर्सनल डिटेल्स है, फोटोज़, वीडियोज़, यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स। एंड यूँ समझ लीजिए आपकी, हम सब की ज़िंदगी है ना, वो इस मोबाइल फ़ोन में अब बंद है। और हमें क्या करना है, कैसे अपने आप को बचाना है, ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं आजकल, या जो साइबर अवेयरनेस है या सेफ्टी प्रैक्टिसेस

है, क्या करना है, क्या लॉज हैं, उस पे करेंगे हम बात। आप भी अपनी राय, अपनी आरा सजेशन हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि हम मिलके इस पे बात करें, और हम वादा करते हैं कि भैया आपकी बात हम पहुंचाएंगे वहां वहां तक जहां जहां तक जाती है रेडियो चिनार की आवाज। आए दिन हम देखते हैं कि साइबर वर्ल्ड की दुनिया में साइबर फ्रॉड्स, ऑनलाइन स्कैम्स के चलते बहुत सारे लोगों को ठगा जाता है। फिर वो सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं, बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, वीडियो कॉल से, फ़ोन कॉल से OTPs चुराए जाते हैं, पासवर्ड चुराए जाते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होती है और फिर ब्लैकमेलिंग होती है। और इसके चलते गवर्नमेंट ने बहुत सख्त कानून बनाए हैं, इनिशिएटिव्स लिए हैं, और हर पुलिस स्टेशन में आप जाके अपने जो एक साइबर सेल स्पेशल होती है वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं, अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं, FIR कर सकते हैं और फिर उसमें तुरंत कार्रवाई होती है। लेकिन इन द फर्स्ट इंस्टेंस बंदे को ये पता होना चाहिए कि मैं ठगा गया हूँ, मेरे साथ स्कैम हुआ है या मैं इस ऑनलाइन फ्रॉड के जाल में फंस गया हूँ। ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है हमें। करेंगे और बातें इस टॉपिक पे। फिलहाल आप कहीं जाइएगा नहीं, इस शाम को और सुहाना बना रहा है हमारा म्यूजिकल सफर। ये जर्नी रहेगी जारी, आज इस साहिल नाम मेरा, सुनते रहिए रेडियो चिनार। यस, आई वांट अ चिकी विकी, एंजॉय द ट्रैक फ्रॉम द मूवी ब्लू। ए आर रहमान का म्यूजिक है और ये ट्रैक आपके लिए।

चल बेटा सेल्फी ले ले रे। जब ये मूवी रिलीज हुई, ये गाना मार्केट में आया तो हर एक की जुबान पे बस यही था। जब भी कोई पार्टी होती थी, फंक्शन होती थी, दोस्त कहीं मिलने जाते थे, घूमने जाते थे, किसी टूरिस्ट स्पॉट पे होते थे, सेल्फी लेने का जो मूड बनता था तो यही गाना गाते थे, ए चल बेटा सेल्फी ले ले रे। आप सुन रहे हैं हर दिल की धड़कन रेडियो जनाब 90.4 FM। इस खूबसूरत सी शाम में आप हमारे साथ हैं। आज हम डिजिटल सेफ्टी के हवाले से बात कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसे केसेस हमारे सामने आए हैं जिसमें डिजिटल सेफ्टी को लेके पीपल आर कंसर्न। तो इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। नेवर टेक कॉल्स और वीडियो कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर्स जो आपको लगते हैं कि स्कैम हो सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे कुछ नंबर्स हैं जिनसे फ़ोन आते हैं और स्पेशली जो वीडियो कॉल्स आती है तो इंसान घबरा जाता है, हड़बड़ी

आपने फोन उठा लिया, ये समझते हैं कि कोई अपना होगा, फिर बस कहानी वहीं से बदल जाती है। सो नेवर टेक वीडियो कॉल्स फ्रॉम अननोन नंबर्स, और जो आपको लगता है सस्पिशियस नंबर से उनको ब्लॉक कीजिए या उनको आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कीजिए। और जब आपको लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, डाउटफुल है आपकी, आपको लगता है कि शायद स्कैम हुआ है, शायद किसी ने मेरा फ़ोन या मेरी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैक की है, या कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है, तो अब नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जल्दी जाइए, उनको इन्फॉर्म कीजिए ताकि वो एक्शन ले सके। और अपने मोबाइल फ़ोन पे अपने आधार कार्ड, अपना इलेक्शन कार्ड, अपना एड्रेस प्रूफ, अपने बैंक डिटेल्स, ओटीपी वगैरह किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है जो टेलीफोन पे, जो मोबाइल फ़ोन पे कॉल के थ्रू आपसे डिटेल्स पूछ रहा है। तो ये समझ लीजिए कि आपके साथ स्कैम हो रहा है, कि गवर्नमेंट की जानिब से हर बार अवेयरनेस की जाती है, बैंक्स की जानिब से हर बार अवेयरनेस ये की जाती है, वो लोगों तक मैसेज पहुंचाई जाती है कि आप किसी भी अननोन नंबर पे फ़ोन के ज़रिए ना तो कोई डिटेल्स दीजिए, ना बैंक अकाउंट डिटेल्स, ना ओटीपी, ना अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर या डेबिट कार्ड का नंबर, कोई भी ऐसी चीज़ आप किसी के साथ टेलीफोन पे, मोबाइल फ़ोन पे, कॉल पे शेयर ना करें, वेदर इट्स वीडियो कॉल और वॉइस कॉल और अ टेक्स्ट मैसेज, प्लीज़ डोंट शेयर, it's going to be very very risky. अगर आप कोई ऐसी कहानी जानते हैं या कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, या आपके पास कोई और एडेड इंफॉर्मेशन है इस रिलेटेड, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए राइट नाउ। कॉल अस ऑन 8899904904, 8899904904 पे कॉल करें, व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज करें, बताइए अपनी बात, और हम वादा करते हैं कि आपकी बात पहुंचाएंगे वहां वहां तक जहां जहां तक जाती है रेडियो चिनार की आवाज। आप सोशल मीडिया के थ्रू भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली हिट मी अप ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स, आप जे साहिल मुजफ्फर के नाम से मिलूंगा फेसबुक, इंस्टा और एक्स पे, जाइए डीएम मी एंड लेट्स बी कनेक्टेड देयर। एंड मोर ओवर यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन ऑफिशियल हैंडल्स ऑफ रेडियो चिनार 90.4 FM ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एंड और भी खबरें आप तक हम ये पहुंचा रहे हैं कि आप हमें iOS और Android पे भी सुन सकते हैं, डाउनलोड और ऐप फ्रॉम iOS और ऐप स्टोर से या एंड्रॉयड से आप डाउनलोड करके रेडियो चिनार 94 FM 24/7 सुन सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। और अगर आप लाइव हमें सुनना चाहते हैं, जी हाँ, स्ट्रीम पे लाइव सुनना चाहते हैं, आप हमारा जो वेबसाइट है रेडियो चिनार .com वहाँ पे जाइए, वहाँ पे भी एक प्ले बटन है, उसको प्ले कीजिए, सुनिए। एंड देयर इज़ वन मोर ऐप, रेडियो गार्डन, जिसमें पूरी दुनिया के स्टेशंस हैं और लाइव ट्रांसमिशन वो आप तक पहुँचाते हैं, वहाँ पे भी आप सर्च कीजिए रेडियो चिनार 90.4 FM, तो आपको हम मिलेंगे, बिकॉज रेडियो चिनार इज around the world and globally people are listening. Filhal, this puppy number I am playing for you, tap your feet along with me and enjoy the beautiful track in this beautiful Twisted Tuesday evening. RJ Sahil Muzaffar in the house, stay connected, I will be right back.

Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की धड़कन धड़कन। आपने ट्यून किया है नॉर्थ कश्मीर का इकलौता सुपर रेडियो स्टेशन 90.4 FM रेडियो चिनार, हर दिल की धड़कन, और इस धड़कन को धड़काते हैं आप। 4:52 इन द स्टूडियो क्लॉक रोलिंग अप इन द बैकग्राउंड लंदन ठुमकदा कमिंग योर वे। एंजॉय एंजॉय एंजॉय, क्योंकि म्यूजिक की गाड़ी हर दिन चल पड़ती है रेडियो चिनार से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

जी हाँ, लंदन ठुमकदा, ये खूबसूरत सा ट्रैक आप सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे 4:55 इन द स्टूडियो क्लॉक और घड़ी कर रही इशारा, इट्स टाइम टू रैप अप द शो। और घर जाने का टाइम भैया आ गया है, लेकिन लेकिन लेकिन म्यूजिक की गाड़ी यहाँ पे रुकती नहीं है। एक्चुअली यहाँ से शुरू होता है एक और सफर, नॉन स्टॉप म्यूजिक और सुहानी शाम पहुंचेगा आप तक। आप कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो चनार। इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात अपने टाइम पे अपने शो के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। Till the time we meet again, let's separate some love, separate some smiles. RJ Sahil Muzaffar saying you. Tada, bye bye. Allah ne ke baan.

Radio Tonight.

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: चलो चलो चलो, लेट हो गए। ले भाई चाबी।
1: सर ऑन स्टेज 5 मिनट।
0: ओके तुम आ रही हो, मैं जा रहा हूं। लगता रूम में रह गया।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी। खामोशियां जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Star Beats with Archidiva, only on Radio Channel 90.4 FM. 4 FM.
1: पानी पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
2: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

क्रिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: Jeremy. Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है, और उनके साथ प्यार से बात करके गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें।

अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज ये असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को करार आ जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: दबी यादें महक जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: सुनिए सुहानी शाम
4: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
3: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो सिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: एफएम। दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा।

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: FM। दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: FM। रेडियो चनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम विनोद खन्ना के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर, मगर, मगर

सुबह चैन आराम रात सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं देखो ना दर्द ठेस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे, अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात लेकिन एक बात।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।
2: सा सा रे ग ग म प प म ग म प प म रे म ग।
3: हाँ सा

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। ओ गोरी, ओ नटखट, ओ खटपट, ओ पनघट, ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय। मुझको बना गए बावरिया, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया। ओ सवरिया हाय हाय।

0: ये साहब
1: माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं, मुक्तम में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
2: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
3: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

मैंने खींचा आ हा हा घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा मैंने खींचा आ हा हा हमसे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया बाजू।

0: यूं ही साथी
1: भाई बंधी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना, अब ना ही कोई उम्मीद ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: दे।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।